0: 啊！哎呀！
1: बटाटी का मतलब
2: पोटैटो, पोटैटो
1: मेरा छोटा सा
2: पोटैटो
1: पोटैटो
3: Don't move your head.